0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन। वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
4: ब्रो, ये फटा है।
5: सुन, फटे फटे आप पुराने नोट को
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
4: वाओ, नया नोट मिलेगा?
5: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: RBI कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।
6: श्रोताओं, आकाशवाणी उदयपुर से समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आज के फिल्म संगीत में आपने महसूस किया होगा कि आज के इस कार्यक्रम को हमने नए पुराने हर तरीके के गीत, हर कलाकार और हर तरह के गीत से इसे सजाया है। तो आइए, खेल खेल में इस फिल्म से अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार का गाया ये गीत। गुलशन बावरा ने इसे लिखा है और संगीत RD बर्मन का।

आनंद मिलिंद के संगीत निर्देशन में अब हम सुनवाने जा रहे हैं झूठ बोले कौवा काटे। इस फिल्म का गाना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ें हैं और इस गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

तो श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये भाग तो अब यहीं समाप्त होता है। दिन में 1:45 पर फिर से ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल दिन का 1 बजने वाला है और कुछ ही पलों में आकाशवाणी जयपुर अजमेर से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा है कि डिजिटल इंडिया विकसित और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है। उन्होंने आज सोशल मीडिया पर कहा कि पिछले 11 वर्षों में डिजिटल इंडिया अभियान ने गरीबों और वंचितों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा देशवासियों के जीवन को अधिक सुगम बनाया है। उन्होंने कहा कि ये पहल देश में सुशासन, पारदर्शिता और डिजिटल सशक्तिकरण को नई दिशा दे रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि ई गवर्नेंस से प्रशासन और जनसेवाओं की पहुंच में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान और यूपीआई जैसी पहलों से आम नागरिकों को बहुत सुविधा मिली है तथा छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी कारोबारियों को भी इसका लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री आज जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एआई और साइबर सिक्योरिटी प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा की गई कई महत्वपूर्ण पहलों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि राज्य में एआई और मशीन लर्निंग एआईएमएल नीति लागू की गई है, साथ ही राजस्थान संपर्क पोर्टल जन शिकायतों के निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
1: राजस्थान संपर्क आज प्रदेश भर में जन अभियोग निवारण का प्रभावी मंच बन चुका है। इस प्लेटफॉर्म पर हर महीने 2.5 से 3 लाख शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण हो रहा है। मैं खुद राजस्थान संपर्क पर आने वाली जन शिकायतों को सुनता हूं और हर शिकायत का प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित भी करता हूं। हमारा मानना है कि डिजिटल तकनीक कामकाज को केवल आसान ही नहीं बनाती है बल्कि नागरिकों के जीवन को सुविधाजनक और बेहतर भी बनाती है।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्मार्ट परियोजना, ई मित्र व्हाट्सएप सेवाओं तथा राजस्थान इनोवेशन चैलेंज पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कॉफी टेबल बुक का भी अनावरण किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है। इस पहल में विश्वास व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे गांव में आजीविका के नए अवसर पैदा होंगे, महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबी ग्रामीण भारत के लक्ष्य को बढ़ावा मिलेगा। दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर आज सुबह हुए हादसे की विस्तृत जांच के लिए जिला प्रशासन ने जांच दल का गठन किया है। जिला कलेक्टर डॉ. सौम्या झा ने दल को दुर्घटना के सभी पहलुओं की गहन जांच कर जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि आज अल सुबह धनावड़ा के पास एक स्लीपर बस और ट्रेलर की टक्कर के बाद आग लगने से बस में सवार 8 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए थे। घायलों का उपचार विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यान आज से पर्यटकों के लिए बंद हो गए हैं। मॉनसून और वन्य जीवों के प्रजनन काल को देखते हुए 30 सितंबर तक पर्यटन गतिविधियों पर अस्थायी रोक रहेगी। इस दौरान वन्य जीवों के लिए अनुकूल वातावरण बनाए रखने और वन क्षेत्रों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पाली जिले के जवाई वन्य जीव क्षेत्र में 1 अक्टूबर से फिर से सफारी का संचालन

0: धरती करे पुकार, वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार। पेड़ रहेगा जीवन में घर तो सांस हमारी बड़े अपार। पेड़ पौधों से उर्वरा छाए, जीवों में नया विश्वास। जल जंगल जमीन से उपजे एक नई एहसास। घर धरती है हरी भरी, लगती मधुरम आसपास। पेड़ों से जीता संसार, बिना न इनके जीवन खास। धरती का श्रृंगार है ये, पेड़ों की है दया अपार। पेड़ है तो पास जीवन, काट कर न कर तू उसे वीरान। पेड़ बिना ये जीवन की, बग्या करो न सुनसान। पेड़ लगाकर जीवन का कर ले सुपर एहसान। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, एक पेड़ सो पुत्र समान। जल जंगल जमीन से ही चलता है यह संसार। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, करे धरा का श्रृंगार। काट काट कर बंजर मानव करे स्वयं को बीमार। पेड़ काटना जीवन की, बन न जाए जीवन खार। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, ये जीवन का सार। जीवन में होगी अनुकूलता, चलता है इससे संसार। कटती धरती करे प्रकार, वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार।
1: बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ बोली नीलम तुमने, कि ये जो पेड़ हैं, पौधे हैं, ये दुनिया इसका पृथ्वी का श्रृंगार हैं। जैसे कि हम तैयार होते हैं तो हम सोचते हैं हम कानों में भी पहन लें, हाथों में भी पहन लें और अपना श्रृंगार करती हैं महिलाएं, उसी तरह पृथ्वी भी अपना श्रृंगार करती है। और ख़ास तौर से जो वृक्ष, ये बरसात का जो मौसम है उस टाइम तो प्रकृति अपना श्रृंगार वैसे ही कर लेती है। तो ये बहुत ही अच्छा समय है, जुलाई का महीना जो होता है वो वृक्षारोपण के लिए बहुत सही माना जाता है।
0: मानसून आने वाला होता है और उसके पहले हमें ये तैयारी कर लेनी चाहिए। और 1 से 7 जुलाई हम वन्य महोत्सव सप्ताह मनाते हैं और सभी उसकी शुरुआत हुई थी 1950 में।
1: 1950 में जो तत्कालीन केंद्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्री थे K.M. मुंशी, उन्होंने वृक्षारोपण और वनों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की थी। तो सखियों, वृक्ष केवल पेड़ ही नहीं बल्कि हमारे जीवन का आधार हैं। वे हमें ऑक्सीजन देते हैं, वर्षा लाते हैं, जलवायु को संतुलित रखते हैं और असंख्य जीव जंतुओं का घर होते हैं। लेकिन केवल हम पौधा लगाकर उसको छोड़ ही नहीं दें, यही पर्याप्त नहीं है कि हम पौधा लगा दें।
0: मैंने बोला ना, एक पेड़ 100 पुत्र के समान होता है। तो जैसे हम अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, वैसे ही पेड़ की भी, मतलब ठीक है आपने जब पौधा रोपण किया लेकिन उसके बाद उसकी देखभाल भी बहुत जरूरी, जब तक कि वो अपनी पूरी अवस्था में नहीं आ जाए।
1: बिल्कुल, उसके देखभाल करने के लिए हमें चाहिए कि समय समय पर पानी दें, खाद का ध्यान रखें, धूप और छाया का भी ध्यान रखें और जानवरों से उसके उन्हें बचाएं, है ना। तो इस तरीके से हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण जो हमने अभी बताया कि जो बरसात का मौसम है उसमें होता क्या है कि वातावरण में नमी होती है और अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं पौधों को जल्दी से बढ़ने के लिए, और बीज भी जल्दी से अंकुरित होते हैं। तो हमें जैसे वैसे पौधे उगाने चाहिए जो इस मौसम में अनुकूल हैं, जैसे कि नीम है, पीपल, बरगद, अमलतास, शीशम, अर्जुन जैसे पौधे लगाना सही रहता है। और साथ ही फूलों में जो ये मौसम है, ख़ास तौर से गुलाब, मोगरा, गुल मेहंदी, रेन लिली, गुड़हल, अपराजिता, चंपा, गेंदा अपने घर में गार्डन में हम लगा सकते हैं।
0: बिल्कुल अफरोज, ये तो आपने बताई कि जैसे मौसम के अनुकूल हमें पौधों का चयन करना चाहिए, और इसके साथ ही जो कहते हैं ना कि उपयुक्त आकार का गड्ढा भी खोदें, गड्ढा 2x2 फीट का या 1.5x1.5 फीट का हो, ताकि पौधे की जड़ें आसानी से फैल सके। और ऐसी जगह चुने जहाँ पौधों को पर्याप्त धूप मिले। ध्यान रखिए कि बड़े होने पर पेड़ की शाखाएं घर या तारों को नुकसान ना पहुंचाए। खोदी गई मिट्टी में जैविक खाद जैसे कि गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी नीम की खली मिलाएं, ताकि पौधों में दीमक ना लगे।
1: बिल्कुल,
0: और आप जैसे पौधे बाजार से भी लाते हैं ना पॉलीथिन में, तो पौधों को पॉलीथिन से भी सावधानी पूर्वक बाहर निकालें, बिना जड़ की मिट्टी को तोड़े। मतलब जब हम पॉलीथिन से हटा के अगर रोपण कर रहे हैं तो वो खत्म नहीं हुए, जड़ उसकी खत्म नहीं हो, और उसे गड्ढों के बीचों बीच रखें और फिर गड्ढे को खाद मिट्टी के मिश्रण से भरें और पैरों से हल्के हाथों से दबाएं, पैरों से हाथों से हल्के हाथों से दबाएं, ताकि हवा के बुलबुले खत्म हो जाए। और रोपण के तुरंत बाद पर्याप्त पानी दें ताकि मिट्टी अच्छी तरह बैठ जाए।
1: बिल्कुल, और उसके बाद फिर जब पौधा लगा दे तो उसके चारों तरफ गार्ड भी लगा दे ताकि वो जानवरों से बचा रहे। और एक विकसित पेड़ जो होता है हमें केवल ऑक्सीजन ही नहीं देता बल्कि हमें फल, लकड़ी, औषधियाँ, छाया और स्वच्छ वातावरण भी देता है ना। और ये जो एक पेड़ होता है वो प्रतिवर्ष 100 से 120 किलोग्राम ऑक्सीजन हमें वातावरण में छोड़ देता है। और आज जो हमारी जो समस्याएं हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग की, प्रदूषण की, जल संकट और ऐसी समस्याएं हैं, इन सब का समाधान तभी होगा जब हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे।
0: बिल्कुल, और अभी ताजा उदाहरण यूरोप का आ रहा है। आप देख रहे हैं ना कि कभी वहां इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी और अभी वहां 40 डिग्री क्रॉस टेम्परेचर चल रहा है। तो सब कुछ मतलब अस्त व्यस्त हो चुका है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हम ही लोग हैं। तो हम यही चाहते हैं कि पौधारोपण कार्यक्रम को जीवन का अभिन्न अंग बनाने की आवश्यकता है। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं ताकि जो हमारे वन है वो सुरक्षित रह सके और जो हमारी साइकिल है जो कहते हैं ना वो चलती रहे तरीके से,
1: आगे आने वाली पीढ़ी को हम हरी भरी धरती दे सके। तो जैसे जहां पेड़ और पानी साथ हो वहां

0: हरियाली अपने आप आ जाती है। और जीवन भी यही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों, जिंदगी में भी हरियाली आ जाती है। तो एक पेड़ और वृक्ष के साथ साथ हमारी जो जिंदगी है वो उसकी खुशहाली भी बढ़ती है, और जब खुशहाली बढ़ती है तो गीत संगीत का भी साथ होना जरूरी है।
1: बिल्कुल, और इसके साथ मुझे कहते हैं ना, माहौल भी खुशनुमा हो जाता है। तो सुनते हैं गीत।

0: अफरोज गाना तो बहुत अच्छा था,
1: बहुत ही प्यारा था।
0: देखो जहाँ तक हम बात करें तो ये महिलाओं का कार्यक्रम है और हम चाहते हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे जाएं, और हम खुद देख रहे हैं कि आज बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, वे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, पायलट, खिलाड़ी और उद्यमी बन रही है। माता पिता भी उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाने में पीछे नहीं रहते हैं, लेकिन एक सवाल आज भी अनदेखा रह जाता है, क्या हम बेटियों को पैसों की समझ भी दे रहे हैं? समाज में आज भी कई लड़कियां उच्च शिक्षा तो प्राप्त कर लेती है, लेकिन बैंक खाता चलाने, निवेश, बजट बनाने या अपनी आय का सही प्रबंधन करने का आत्मविश्वास नहीं रखती है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में केवल 21% महिलाएं आर्थिक रूप से साक्षर है, जबकि पुरुषों में 27% है। तो शिक्षा बेटियों को पहचान तो देती है, लेकिन आर्थिक समझ उन्हें सच्ची स्वतंत्रता देती है। और अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान किसी भी देश के सतत और समावेशी विकास की नींव है, क्योंकि जहां तक अगर आधी

0: उन्नति की ओर नहीं होगी तो देश भी उन्नति की तरफ नहीं होगा।
1: बिल्कुल सही है नीलम, एक समय ऐसा था जब महिलाओं की भूमिका केवल घर तक ही सीमित मानी जाती थी, लेकिन आज की महिला घर की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ शिक्षा, चिकित्सा, बैंकिंग, उद्योग, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, खेल, सेना, राजनीति और अंतरिक्ष जैसे अनेक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है। और यदि हम ग्रामीण महिलाओं की बात करें तो लाखों महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अचार, पापड़, मसाले, हस्तशिल्प, डेयरी, सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर और ऐसे कई छोटे छोटे उद्योग धंधे चलाकर अपने परिवार की आय बढ़ा रही हैं। और इससे न केवल परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरती है बल्कि गांवों का भी विकास होता है। और आज के जो डिजिटल युग में महिलाएं घर बैठे ऑनलाइन व्यवसाय भी कर रही हैं, सोशल मीडिया है, ई कॉमर्स और डिजिटल भुगतान में उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का अवसर दिया है। सरकार द्वारा चलाई जा रही बहुत सी योजनाएं हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, स्टैंड अप इंडिया, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, लखपति दीदी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब योजनाएं ऐसी हैं जिससे कि वो महिलाएं हैं आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं और देश के विकास में पूरा पूरा सहयोग कर रही हैं।
0: देखो फिरोज, ये जो आपने बात करी ना, ये सब पेड वर्क की बात है, मतलब अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसके बदले में उसको वेतन मिल रहा है, लेकिन घरेलू कार्य जैसे अवैतनिक कार्यों का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में सीधा नहीं बल्कि एक भारी अप्रत्यक्ष योगदान होता है। यह कार्य अन्य पारिवारिक सदस्यों को रोजगार में जाने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करता है। और अभी हाल ही में हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस चीज को माना है कि ये एक पेड वर्क है, अनपेड वर्क नहीं है घरेलू महिला का।
1: ये तो तुमने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मैं तो कहती हूँ सभी बहनों को इसका पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज पे मोहर लगाई है। और एक बात और भी है कि जो हमारी जो महिलाएं होती हैं उनको हाउसवाइफ नहीं बोलकर होम मेकर बोला जाए,
0: तो वही है ना कि
1: इनडायरेक्टली संभालना भी बहुत बड़ा काम है।
0: इनडायरेक्टली मतलब ये कि एक तरीके से बचत कर रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: घर के उसमें रोजगार में हम बढ़ावा ही दे रहे हैं।
1: बिल्कुल, अगर हम एक टाइम का खाना बाहर खा लेते हैं तो हमें इस चीज का पता पड़ जाता है कि हम घर में कितनी बचत कर रहे हैं। क्यों सही है ना कि अगर हम भी सोचें कि नहीं चलो आज बाहर ही खा लेते हैं, कि जो खाना हम 100-200 रुपए में बना रहे हैं उसके लिए हम 1000-2000 रुपए पेट करते हैं कि नहीं करते।
0: बिल्कुल, और है ना क्या होता है कितनी बार हम आर्थिक आजादी को केवल बेटियों की नौकरी तक ही सीमित कर देते हैं जबकि यह सही वित्तीय समझ से आती है। तो इसलिए वित्तीय आजादी पर भी हमें कुछ गौर करना होगा। तो इसके लिए कि बचपन से आप बेटियों को जिम्मेदारी दें, जैसे पॉकेट मनी का बजट बनाना, घर के बिल ऑनलाइन जमा कराना, बैंकिंग और डिजिटल साक्षरता भी मतलब बेटियों को होनी चाहिए। केवल खाता खुला कर उन्हें छोड़ दें बल्कि उन्हें पासबुक समझने, डिजिटल भुगतान का सुरक्षित उपयोग करने की ट्रेनिंग दें। उन्हें कहते हैं ना कि जैसे कितनी चीज आजकल ऑनलाइन हो रही है, तो आप बच्चों को भी ये चीज शुरू से सिखाएं, समझाएं, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन लेन देन सबके बारे में जानकारी दें।
1: ही काम ऑनलाइन हो रहे हैं,
0: बिल्कुल ये बहुत जरूरी है। और क्रेडिट और निवेश का ज्ञान भी आप अपनी बेटियों को दें। बचत खातों के अलावा उन्हें निवेश के तरीके जैसे कि म्यूचुअल फंड है, माइक्रो क्रेडिट के बारे में बताएं। आंकड़े बताते हैं कि अब तक केवल 11% महिलाओं ने माइक्रो क्रेडिट का उपयोग किया है। तो निवेश भविष्य को कैसे सुरक्षित बनाता है यह कौशल उन्हें आना ही चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: और पारिवारिक बजट में भी बेटियों को महिलाओं को शामिल करना चाहिए, उससे उनमें आत्मविश्वास आता है और अपने कमाए पैसों का सही उपयोग करना आता है।
1: बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी जानकारी आज हमने अपनी सखियों को दी है कि हमें किस तरीके से बेटियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बनाना है और सशक्त भी बनाना है और उनको किस तरीके से हमें समाज के अंदर उन्नति में भागीदार बनाना है। तो अब चले सुने एक प्यारा सा गीत।

0: मौसम तो बड़ा बेईमान है, ये तो हम भी देख रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना मौसम कोई सा भी हो लेकिन हमें हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: और मैं इशारा कर रही हूँ, आज 1 जुलाई है और हर वर्ष 1 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। यह दिन उन सभी डॉक्टरों को समर्पित है जो अपने ज्ञान, सेवा और समर्पण से लाखों लोगों को जीवन बचाते हैं। डॉक्टर केवल बीमारियों का इलाज ही नहीं करते बल्कि मरीजों को आशा, विश्वास और नया जीवन भी देते हैं।
1: बिल्कुल।
0: डॉक्टर केवल एक पेशा नहीं बल्कि मानवता की सबसे बड़ी सेवा है।
1: बिल्कुल सही है। और कोरोना महामारी के दौरान हमने देखा कि डॉक्टर, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने परिवारों से दूर रहकर लाखों लोगों की जान बचाई। उन्होंने दिन रात सेवा करके मानवता का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया। और हमें डॉक्टरों के पास केवल बीमारी होने पर ही नहीं जाना चाहिए बल्कि समय समय पर स्वास्थ्य जाँच भी करानी चाहिए। और स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ संतुलित भोजन लें, नियमित व्यायाम करें, पर्याप्त नींद लें और समय समय पर टीकाकरण करवाएं। डॉक्टर की सलाह के बिना दवाई नहीं लें और डॉक्टरों का सम्मान करें, उनके प्रति विश्वास रखना भी हम सभी का कर्तव्य है।
0: और आपको पता है कि आज के दिन क्यों मनाया जाता है? यह दिन भारत के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय यानी कि डॉक्टर बीसी रॉय की जयंती 1 जुलाई 1882 और पुण्यतिथि 1 जुलाई 1962, मतलब उनकी जयंती और पुण्यतिथि दोनों एक ही दिन है, के उपलक्ष में मनाया जाता है। वे एक प्रसिद्ध चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और दूरदर्शी राजनेता थे। तो यह दिन चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पेशेवरों को सम्मानित करने और मानव जीवन को बचाने में उनके निस्वार्थ योगदान को मान्यता देने के लिए समर्पित है। और बीसी रॉय को 1961 में भारत रत्न, जो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, से सम्मानित किया गया था। और 2026 का थीम है मुखौटे के पीछे, चिकित्सकों का उपचार कौन करता है।
1: अच्छा,
0: यह डॉक्टरों के मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य पर केंद्रित है और दूसरों की देखभाल करने वालों को समर्थन देने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। हम देखते हैं ना कि डॉक्टर्स तो हमारे लिए खड़े रहते हैं लेकिन डॉक्टर्स के लिए कौन रहता है।
1: बिल्कुल सही।
0: तो ये इस वर्ष का थीम इसी पर आधारित है। मतलब डॉक्टर्स को भी, मतलब कहते हैं ना प्यार विश्वास की, उनको भी जरूरत होती है। तो हम तो यही कहेंगे कि ये एक ऐसा पेशा है जिसमें डॉक्टर्स को भी पेशेंस रखना चाहिए और मरीजों को भी रखना चाहिए।
1: बिल्कुल सही है। कई बार ऐसा हो जाता है कि नहीं चाहते हुए भी कुछ अनहोनी हो जाती है तो घर वाले और जो लोग साथ वाले होते हैं वो गलत तरीके से डॉक्टर से बिहेव करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टरों के ऊपर कुछ भी नहीं है बेचारे, वो तो कोशिश तो पूरी करते हैं।
0: कहते हैं ना भगवान का रूप तो होते हैं लेकिन भगवान नहीं होते हैं। कहते हैं कि जन्म मरण ऊपर वाले के हाथ में होता है।
1: अगर ऐसा होता तो डॉक्टर्स तो कभी ऊपर जाते ही नहीं,
0: जाते ही नहीं है। तो हम कितनी बार सुनते हैं ना कि अच्छे से अच्छे डॉक्टर भी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो वो सब ऊपर वाले के हाथ में, ठीक है। डॉक्टर अपना भरसक प्रयास करते हैं, अच्छे से अच्छा करने की करते हैं, तो हमें उनकी सराहना करनी चाहिए।
1: जीवन की डोर थाम लेते हैं, हर दर्द को आराम देते हैं। ईश्वर का सबसे सुंदर उपहार हमारे डॉक्टर हैं। बार बार।
0: बिल्कुल। और इस विशेष अवसर पर हम सभी डॉक्टरों को उनके अथक परिश्रम, त्याग और सेवा भावना के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। आइए हम उनके सम्मान में संकल्प लें कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, नियमित स्वास्थ्य जांच कराएंगे और डॉक्टर के प्रति सम्मान एवं विश्वास बनाए रखेंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो अभी हमारा डॉक्टर्स डे मनाना सफल होगा। और वैसे आज एक दिवस और है, सीए दिवस, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये भी हमारे, मतलब कहते हैं ना, जिंदगी का एक हिस्सा है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि हमारे सारा लेन देन का जो भी होता है वो सीए ही संभालते हैं।
1: और जैसे हमने आज बात भी की कि महिलाओं को भी हम आर्थिक रूप से सशक्त करें, तो इस मामले में भी हम कहना चाहेंगे कि बहनें आए और ये सीए बने और हमारा देश के विकास में योगदान।
0: बिल्कुल। और आज तो सीए की फील्ड में बहुत सारी बेटियां और महिलाएं आगे हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो हम तो यही चाहते हैं कि महिलाएं आगे आए, आर्थिक रूप से सक्षम बने और इसी तरीके से हमारे देश में योगदान देती रहें।
1: और सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: get me food. बहुत ही मस्त गीत हमने अपनी सखियों को सुनाया, और क्योंकि मौसम भी खूबसूरत है और हमने इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी तो खुशी तो अपने आप बनती है। उसके साथ अब बात करते हैं मानसून में अपने घर की कैसे देखभाल करें।
1: बिल्कुल सखियों, मानसून आने वाला है और उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले से हमारे तैयारियां कर लें कुछ, ताकि हमारा घर भी सुरक्षित रहे और हम भी सुरक्षित रहें। तो सबसे पहले छत और दीवारों की वाटर प्रूफिंग करवा लें, ड्रेनेज पाइप्स को साफ कर लें।
0: बिल्कुल,
1: कितनी बार क्या होता है ड्रेनेज पाइप साफ नहीं होते हैं तो पानी भर जाता है और धीरे धीरे दीवारों में उतर जाता है।
0: बिल्कुल, और कूलर का जो पानी है वो हर सप्ताह में बदलें, और मच्छरों का भी बचाव करें, बिजली के तार खुले नहीं रहें इसका भी ध्यान रखें, और जो खाना है उसको हमेशा ढक कर रखें, और ख़ास तौर से बच्चों का ख्याल रखें कि गंदे पानी में नहीं खेलें, अगर खेलेंगे तो उन्हें दूसरी बीमारियां भी आज बरसात के मौसम में ज़्यादा ज़ोर से देती हैं, जैसे कि मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, वायरल बुखार, फूड पॉइजनिंग, इनका ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए सफाई और पौष्टिक भोजन का ख़ास तौर से ध्यान रखें,
1: और लकड़ी के फर्नीचर को आप नमी से बचाएं, भारी पर्दों की जगह हल्के पर्दे इस्तेमाल करें, और जैसा आपने बोला कि इलेक्ट्रिक वायरिंग की जाँच कराएं, मतलब खुले नहीं रखें, अर्थिंग चेक करें, और जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है अगर उनमें जरा से भी आपको मिस्टेक लग रही है तो उसको तुरंत रिपेयर कराएं, और जब भी बारिश रुके घर की खिड़कियां और दरवाजे खोल दें ताकि हवा का क्रॉस वेंटिलेशन हो सके और सीलन की बदबू दूर हो। अलमारी और बंद कमरों में नमी को रोकने के लिए बेकिंग सोडा या नमक के कटोरे को कोने में रख दें। सीलन की बदबू से बचने के लिए लौंग और दालचीनी को पानी में उबाल कर रूम फ्रेशनर की तरह
0: उसमें डाल के रखें, है ना, कपड़ों में रखें।
1: हाँ, वो भी आप कपड़े में बांध कर रखें, डायरेक्ट ना रखें।
0: और नीम के पत्ते डाल दें अलमारी के अंदर, पेपर वगैरह बिछा कर,
1: पानी कहीं पर भी एक तो जमा होने दें, कीटनाशक का

0: प्रयोग करें। अगर आप बाहर से भीग कर आ रहे हैं तो गीले छाते, रेनकोट, जूते आप घर के अंदर न फैलाएं, आप प्रवेश द्वार पर ही डोरमेट रखें जहां पर सारी चीजें रख दें ताकि जो सारा पानी है वो उस पर जड़ जाए।
1: बिल्कुल, और रेनकोट और छतरियां भी जब हम यूज करते हैं तो उनको भी पूरा
0: सुखाएं,
1: उनको ऐसे फोल्ड करके रखें, पहले उनको सुखा के और फिर उनको तय करके पाउडर वगैरह लगा के फिर उसको रखें।
0: और खास तौर से इस मौसम में हमें जो सबसे ज्यादा साफ सफाई का ध्यान रखना होता है वो होता है एक तो रसोई और एक वॉशरूम। तो रसोई और वॉशरूम का बिल्कुल साफ रखें, एग्जॉस्ट फैन को चालू रखें ताकि अंदर की जो मतलब जो स्मेल होती है वो सारी बाहर निकल जाए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर इनका हम ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल मानसून का स्वागत करें, बारिश का मजा लें। लेकिन इसके साथ साथ ही आप अपने स्वास्थ्य का और परिवार वालों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि इस मौसम में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। तो आप हेल्दी खाएं, अच्छा खाएं, पौष्टिक खाएं,
1: घर का खाना खाएं, और कहीं बाहर पिकनिक पर भी जाएं तो घर का ही खाना लेकर जाएं, है ना। और साफ सफाई का, साबुन वगैरह, हैंड वॉश, हमेशा
0: पर्सनल हाइजीन का तो बहुत जरूरी है ध्यान रखना। इसके साथ ही अपने घर और घर के आसपास की सफाई का भी ध्यान रखें, आसपास भी गंदा पानी ना इकट्ठा होने दें, नहीं तो उससे भी क्या है कि मच्छर उत्पन्न होते हैं। तो ये मतलब एक छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमें मानसून में तकलीफ नहीं होगी।
1: बिल्कुल।
0: और चलते चलते सुनते हैं
1: प्यारा सा गीत।

0: तो सखियों, आए दिन बहार के इसी प्यारे से गीत के साथ ही अब हम लेते हैं आपसे विदा। तो दीजिए अफरोज फारूकी और
1: नीलम जैन को आज्ञा।
0: नमस्कार, नमस्कार।

महिला जगत, ये कार्यक्रम अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उदयपुर मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। दिन के 1:45 हो चुके हैं। ये समय है आप तक एक बार फिर से पहुंचाने का फिल्म संगीत।

ये आवाज़ें थी आशा भोसले और किशोर कुमार की। फिल्म का नाम था श्री 420। श्रोताओं, फिल्म संगीत का अगला गीत आप सुनने जा रहे हैं शमशाद बेगम का गाया हुआ। फिल्म है आर पार।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, कैसे क्लिक में, अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: 10 लाख की लॉटरी, मुझे
2: फर्जी ऑफर से सावधान,
1: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना नया दौर फिल्म से, आवाज थी आशा भोसले जी की। आइए फिल्म संगीत का अगला नगमा सुनते हैं, हावड़ा ब्रिज। इस फिल्म से एक बार फिर से आवाज है आशा भोसले की।

जागते ओ गोरी जरा आंखों से उजाले, ढूंढ रहे तुझे लाखों दिल।

श्रोताओं, ये था फागुन फिल्म का गाना, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें थीं। आइए अब आपको फिल्म संगीत का आखिरी गीत सुनाते हैं, तीसरी कसम। इस फिल्म से आशा जी ने इसे गाया है।

तो श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आप साथ हैं आकाशवाणी उदयपुर के मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। दिन के 2:10 हुए हैं। प्रस्तुत है अब विकास चर्चा। विकास चर्चा में आज का विषय है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। नमस्कार श्रोताओं, आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के बारे में, जिसका उद्देश्य देश के बुनियादी ढांचे को आधुनिक, तेज और अधिक समन्वित बनाना है। प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना की शुरुआत 13 अक्टूबर 2021 को तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य देश के सड़कों, रेल मार्गों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, जल मार्गों, बिजली, गैस पाइपलाइन और डिजिटल नेटवर्क जैसी आधारभूत सुविधाओं के विकास को एकीकृत करना है।

पहले अक्सर अलग अलग विभाग अपनी अपनी योजनाओं पर काम करते थे, जिससे परियोजनाओं में देरी और लागत बढ़ जाती थी। प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के तहत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ा गया है, ताकि सभी परियोजनाओं की बेहतर योजना बन सके और उनका कार्य समय पर पूरा हो सके।

इस योजना का एक प्रमुख लक्ष्य मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। इसका अर्थ है कि सड़क, रेल, जलमार्ग और हवाई परिवहन को इस तरह से जोड़ा जाए कि लोगों और सामान की आवाजाही तेज, सुरक्षित और कम खर्चीली हो। इस पहल से उद्योगों को कच्चा माल और तैयार उत्पाद एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में आसानी होगी। इससे परिवहन लागत कम होगी, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और देश में निवेश तथा रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना का लाभ किसानों, व्यापारियों, उद्योगों और आम नागरिकों सभी को मिलने की अपेक्षा है। बेहतर सड़कें, तेज रेल संपर्क, आधुनिक लॉजिस्टिक्स और मजबूत परिवहन व्यवस्था से देश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना केवल आधारभूत ढांचे के निर्माण की योजना नहीं है, बल्कि यह एक विकसित, आत्मनिर्भर और आधुनिक भारत के निर्माण की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य विकास कार्यों को तेज

यह एक विकसित आत्मनिर्भर और आधुनिक भारत के निर्माण की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य विकास कार्यों को तेज, पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाना है।

श्रोताओं, ये थी आज की विकास चर्चा। विषय था प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। और अब इसी के साथ आज की विकास चर्चा यहीं समाप्त होती है।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। दिन के 2:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे हिंदी में दोपहर समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मॉनसून के दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और

0: प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में यूपीआई के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि बीबी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
1: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपए होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, और फिर बोइंग गांव जाकर जमीन स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
2: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
0: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
3: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
3: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च

0: स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
1: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं, जो चार दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
2: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
3: आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयां और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियां भी उपलब्ध कराता रहा है।
4: इंक्लूडिंग इमरजेंसी एंड जनरल यूज मेडिसिन।
1: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर GST ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। GST से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में ISIS से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में ISIS के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में ISIS और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत

0: शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में ISIS के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। हमारे किसान भाई अब सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम कृषि जगत।

0: राम राम नीता भाई सा, राम राम।
1: राम राम पेमा भाई, राम राम।
0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनो वाला सगला किसान भाई ने अपनो
1: राम राम सा।
0: देखो सा किसान भाई, अपना कार्यक्रम भी टेम भी और माँ आया अपना घनी सारी जानकारी देवर वास्ते, तो खेती बाड़ी संबंधी जानकारी देवा और लारे लारे काम काज बातचीत अपना वास्ते कई वही सके या सब जानकारी लेन आया सा।
1: और देखो सबू पहला किसान भाई ने बतावा कि भाई खरीफ फसलारी वामणी किसान भाई करवारी तैयारी में है, तो खरीफ फसलारी टेम पे अगर वामणी कर लेगा तो वणी वणा ने कई कई लाभ वेच सकेगा। टेम पे वामणी देखो खेती रे वास्ते एक जीवनदायिनी शक्ति है, जदि की अणमें देरी करनो भी भारी नुकसान रो कारण बन सके। टेम पे वामणी करांगा तो किसान भाई ने देखो कई तरह रा लाभ मिल सके। अणी टेम पे खरीफ फसलारी वामणी रो टेम है और किसान भाई टेम रहता वामनी करेगा तो कई तरह रा जोखिम भी बच सकेगा सा।
0: सही कह रहे हो सर, जो टेम पे कीदो देखो काम है जो बुआई है वणियों कई है कि प्राकृतिक संसाधन जो है वे कौन सबों बढ़िया जो इस्तेमाल आप ही कर सका, वणी का तरीका जो है वणी का उपयोग आप ही कर सका। और पौधा की शुरुआती जो वर्का है वन मतलब बाणो जुलाई रो महीनो यदि शुरू हुए यदि तो शुरुआती वर्का के पूरा उपयोग आप ही कर पावा, जणियों कई है कि जड़ा जो है वह मजबूत व्यवसाय।
1: अणी टाइम पे देखो मिट्टी में प्राकृतिक रूप पर्याप्त नमी और तापमान वे जो कि बीजा ने बेहतर अंकुरण रे वास्ते बहुत सही रहे। और टेम पे वामणी करवाम देखो फसलारी सुरक्षा रे लारे लागत में भी कमी वे जावे सा।
0: और अपना फसलारा महीने कीट और रोग को प्रकोप जो है वो कम वे और जना फसलारा महीने टेम पे बोया जावे जो वणियो कही है कि कीट जण में देखोगे तना छेदक है या पचे और भी तरह का जो बीमारियां है वण को हमलो व्यवहार की जो है वण में देरी हुई दिखी की जो फसल है वण की तुलना में बहुत कम व्या करे।
1: शुरुआती दौर में फसल तेजी बढ़े पे माँ भाई जने कही वे की खरपत वारा ने पनपवारो मौको नहीं मिले और किसान भाई ने देखो निराई गुड़ाई रो जो खर्चो है वो भी बनारो बच जावे सा।
0: और टेम पे बोई हूं देखो कि अपना पौधा में अपनी जो है वानस्पतिक वृद्धि जो है और वण के पाकवा की जो पूरो टेम है वो मिल जावे। जणियों को ये कि अनाज में दाणो है वण को आकार है विको वजन मतलब गुणवत्ता है ये सब बढ़िया वे जावे।
1: तो देखो खरीफ फसलारी अगर किसान भाई टेम पे वामणी करेगा तो वणा ने बहुत सारा लाभ वेगा। अंडे बारा में देखो आगे और जानकारी करामा बटा पहली आपको तो बढ़िया सो राजस्थानी गीत सुनाई दा।
0: हाँ सा सुनाए गीत।

0: दोनों लिए की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन। वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
4: ब्रो, ये फटा है।
5: सुन, फटे फटे आप पुराने नोट को
6: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
4: वाओ, नया नोट मिलेगा?
5: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
6: RBI कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।
7: तो पेमा भाई, देखो बढ़िया सो राजस्थानी गीत आपा सुनायो, लारे लारे संदेश सुनाया। और अटा पहली बात कर रहा कि भाई खरीफ फसल आ रही, अगर टेम पे वावनी किसान भाई कर ले वे तो वनाने कई कई फायदे हो सके।
8: सही कह रहे हो सर। देखो, मौसम का उतार चढ़ाव जो है वणी में वंशता दिखा अपने काम कर सका, और टेम पे जो अपनी फसल की बोवनी करा तो वणियों को एक वर्षा के दौरान जो अपने लोटवों पहली जो है अपना फसल पाकवा की स्थिति जो वही जावे, मतलब बरका छाटा यदि दम जावे तो वणी टाइम तक अपनी फसल भी तैयार वही जावे। जणियों की है कि सितंबर अक्टूबर रो महीनो जो है वह वणी टाइम पे अपना अचानक जो तेज वर्का या पाछे सूखा की स्थिति जो वे वणी भी अपनी नुकसानों वंचित दिखा रही सका।
7: और देखो, अगली फसल जिस तरह की रबी रे वास्ते भी टाइम री बचत वही जावे, और खरीफ फसलारी टाइम पे कटाई कर सका। टेम पे खरीफ फसलारी वावणी किसान भाई ने रबी फसलां जिस तरह की गेहूं, सरसों, चना रे वास्ते खेत तैयार करवा रे वास्ते बना रहो सही टेम मिल जावे। सही टेम पे वावणी करवाऊ पर्याप्त जो है बनाने उत्पादन भी पछे रबी फसलारो मिल सकेगा सर।
8: और खरीफ फसला के टेम पे जो आप बुआई करा तो किसान भाई रे वास्ते समृद्धि को आधार वही सके। जणियों कही के देरू विरोधी को जो भी काम है वणी में बुआई न केवल आनी फसल की पैदावार घटावे बल्कि देखो पूरी खेती बाड़ी को चक्र है वरने भी प्रभावित करे।
7: सही कह रहा हूँ सर। और देखो, खरीफ रे वावणी हमेशा मानसून री पहली 2-3 वर्षा हव वही जावे, लगभग की 50-60 मिलीमीटर वर्षा वे वे वणी स्थिति में, और मिट्टी में जो है 3-4 इंच तक नमी पहुंचवारे केड़े आपाने शुरू करनी चाहे सा।
8: और मौसम विभाग को जो पूर्वानुमान है वन्ने ध्यान में रखता लग गई अपना कीदी दिकी बुवाई है वह हमेशा अपना फायदेमंद साबित रहे, और खेती को मुख्य रूप देखो मानसून मतलब वर्षा के टाइम पे जो निर्भरता रहे। और अणियों कही है कि टाइम पे जो आप बीजोपचारण करा और वणियों कही है कि फसल में उत्पादन जो है या गुणवत्ता है दो ही तरह की बात जो है सीधो अपना सकारात्मक असर डाले, और जो गुणवत्ता की बात है तो वह कटन कटे अपना आर्थिक स्थिति में जुड़ी दिखी रहे।
7: तो देखो, समृद्ध किसान वेगा जदीस जो है समृद्ध देश वेगा। और देखो आप कहना भाई खरीफ री मामणी किसान भाई आप टेम पे कर लीजो ताकि कटाई टेम पे वेगा तो उत्पादन हव वेगा, मेहनत बेकार नहीं जाएगा। और जानकारी तो देखो कार्यक्रम में आगे और करावा, बटा पहली गीत संगीत आड़ी चालना और सुनावा बढ़िया सो राजस्थानी गीत।

0: तो नीता भाई साहब राजस्थानी लोकगीत सुनो सा और कार्यक्रम ना आगे बढ़ावा और राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस जो कि आज आप ही मनाई रहा हाँ, तो अपना किसान भाई ने जानकारी देवा कि किसान के जो स्वास्थ्य है वन की नियमित स्वास्थ्य की जांच है वह बहुत वेणी जरूरी है क्योंकि अपना स्वस्थ जीवन है वो वेणा जरूरी है। तो आज वेणी दिवस रे माते आप किसान भाई ने यह जानकारी देवा सा।
1: देखो सा अपनो देश कृषि प्रधान देश है और अटे आधी वत्ती आबादी जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप खेती पे निर्भर करे और कहीं भी खेती में देखो किसान भाई जो है दिन रात धूप छांव सर्दी गर्मी री परवाह करे

0: ना खेता में पसीनो बहावे ताकि देश रो जो है हर नागरिक पेट भर सके सा।
1: लेकिन देखो सा अपना देश की और पूरी दुनिया की जो परिस्थिति देखो कि दूजा ने जो पोषण दिया वालो अन्न दाता है वो खुद अपना स्वास्थ्य के प्रति समूह ज्यादा लापरवाह व्या करे। किसान भाई जो है अपना देश को गौरव है लेकिन देखो कि स्वास्थ्य के प्रति देखो वहाँ का बिगड़ तो देखो स्वास्थ्य है देश की खाद्य सुरक्षा है वन की अर्थव्यवस्था ने दो ही प्रभावित करो वाला काम व्यवस्था।
0: और देखो आज जिस तरह की आप क्यों भाई राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है तो यो दिन देखो अपने देश रा महान चिकित्सक स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल रा दूसरा मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय री याद में मनायो जावे सा।
1: और यो दिन जो है अपना समाज में डॉक्टर जो है वना के अमूल्य योगदान वना के निस्वार्थ सेवा और समर्पण के जो प्रति आभार व्यक्त करवा को दिन है और विशेष अवसर यो है सा। और अणी अवसर पे जो है आप अन्नदाता स्वास्थ्य को जो स्वास्थ्य है अपना किसान भाइयों को जो स्वास्थ्य वन के प्रति वना ने जागरूक करा वना नियमित स्वास्थ्य जांच का वास्ते संकल्प लेवा। और अणी बात ने भी देखो आप ही नहीं भूला कि स्वस्थ किसान जो है समृद्ध किसान है अपना सशक्त अपना देश ने बनावे सा।
0: और देखो किसान भाई रे स्वास्थ्य ने प्रभावित करवा वाला कई कारक है वनारी बात करा पेमा भाई तो देखो कठिन शारीरिक श्रम किसान भाई करे लगातार झुकने काम करनो भारी वजन उठानो और लंबा टाइम तक खड़ा रहनो किसान भाई दिनचर्या में शामिल वे वैसा।
1: देखो सा गर्मी में बहुत तेज गर्मी पड़ रही है वी टाइम पे भी बरखा छाटा वेरिया में वी टाइम पे भी और अपना निमोनिया है त्वचा रोग है अन्य तरह का रोग का खतरा जो है किसान भाई हमेशा वणिया दिखा रहे और वे देखो अने सब बीमारियों तकलीफों झेलता दिखा वे खेती बाड़ी रो काम करता रहे।
0: कीटनाशका और रासायनिक खादा रो प्रयोग भी जो है किसान भाई करे तो कंडान कंडान देखो वना सुरक्षा उपकरण रे भी उपयोग कर लेवे तो ग्रामीण क्षेत्र में देखो बीमारी ने मामूली मान ने भी ने किसान भाई टालता रहे या प्रवृत्ति जो है वनारे स्वास्थ्य ने भी प्रभावित करे सा।
1: अब देखो सा अपना नियमित रूपों स्वास्थ्य की जांच क्यों जरूरी है बात यह है कि देखो अपना किसान भाई जो अक्सर देखो अपना डॉक्टर का नके कोड नहीं जावे और वह बीमारियों जो असहनीय व्यतीत की स्थिति में भी वह काम करता रहे तो अणी स्थिति ने देखते दिखे स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति जो है दो ही जो है घातक वही जावे।
0: नियमित स्वास्थ्य जांच देखो बीमारियां रे शुरुआती चरण में इस पतो लाग जावे जणियों इलाज आसान वे जावे और कम खर्चीलो भी वे वैसा।
1: और अपना किसान भाई जो है वना के देखो रक्तचाप है अपना शुगर की तकलीफ है या फेफड़ा की जांच है अपना त्वचा संबंधी रोग है आँखें की जांच है ये सब नियमित रूप वेणी चावे अणियों को एक अत्यधिक आप श्रम करा मेहनत करा तो वन के कारण अपना हृदय रोग जो है वणियों वंचाव वास्ते अपना ग्रामीण क्षेत्र में तेजी में बढ़ता दिखाई मधुमेह की समस्या है अणु की पहचान करता दिखाई आसानी जो आप ही काम कर सका।
0: और देखो कीटनाशक रो प्रयोग किसान भाई करे तो कीटनाशक रा धुआं है धूल है मिट्टी रा कण है अणु वेवा वाला जो अस्थमो है या पचे सांस रा रोग है अंडे वास्ते भी नियमित जांच जरूरी है त्वचा और आँखा रे वास्ते जैसे कि तेज धूप में रसायन रो सीधे संपर्क में आ वेवा वाला जो इन्फेक्शन है और मोतियाबिंद है असी जो बीमारियां है अणा रे खतरा बचवा रे वास्ते भी नियमित जांच जरूरी है सा।
1: और साल में एक दान जो है अपना हड्डियां की जोड़ा की जांच भी वेने जरूरी है क्योंकि देखो लगातार आप हार तोड़ मेहनत करा तो अपना गठिया रोग है अपना रीढ़ की हड्डी की समस्या है ये सब जो बढ़ जावे तो उनमें जांच वेनी चावे।
0: और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस आज है तो यो केवल देखो डॉक्टर ने विधाई दे बधाई देवारे वास्ते नहीं है बल्कि देखो वनारे समर्पण और सेवा ने सार्थक बनावारे वास्ते है तो आपने स्वास्थ्य रे प्रति जागरूक रहवारो संकल्प आपने लेनो है जदि जो है समृद्ध और स्वस्थ देश रो निर्माण वही सकेगा सा।
1: या तो भी जानकारी सा कार्यक्रम जाओ पहले सुना एक और राजस्थानी गीत।
0: हाँ सा

0: तो पेमा भाई देखो, आज किसान भाई ने कार्यक्रम में घनी सारी जानकारी दी थी कि भाई खरीफ फसलारी टेम पे वावनी किस तरह करनी है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस रहे अवसर पे किसान भाई अपने स्वास्थ्य ने किस तरह हाउ रखे, और बढ़िया बढ़िया राजस्थानी गीत भी हुनाया। और अब घड़ी आड़ी देखा था अपन कार्यक्रम रो टेम में, क्यों तो चाला सा
1: राम राम सा।

0: कृषि जगत ये कार्यक्रम अभी आपने सुना श्रोताओं, ये आकाशवाणी उदयपुर है मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। दिन के 3 बजने को है। अब आप आकाशवाणी दिल्ली से समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देशभर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेनदेन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके बदल गए हैं। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। इस योजना का शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को किया गया था। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन JRAMJI अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि JRAMJI अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण को बढ़ाया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
3: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
1: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने करियर में एयर मार्शल दीक्षित ने कई महत्वपूर्ण अभियानों और अभ्यासों में भाग लिया है। इनमें ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन रक्षक, कोप इंडिया और ऑपरेशन सिंदूर शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए

0: युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े धान में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही विशेष जांच टीम SIT को 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। राज्य सरकार ने 15 जून को 3 सदस्यीय SIT का गठन किया था। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
1: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए, अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
0: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले दो दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। दिन के 3:05 हो चुके हैं। अब हमारी आज की ये दोपहर कालीन सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 सायंकालीन सभा के प्रसारण लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी उदयपुर है। शाम के 5 बजे हैं। हमारी आज की संध्याकालीन सभा अब आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में युवा साथियों के लिए प्रस्तुत है उनका दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, हरियाली से खुशहाली लाओ। आज का युवाणी कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपके साथ आपकी दोस्त कशिश माहेश्वरी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी वन महोत्सव चल रहा है, इसी से संबंधित सुनिए युवा कवि और कवित्रियों द्वारा प्रस्तुत काव्य गोष्ठी।
1: नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि हम सभी को विदित है, संपूर्ण भारतवर्ष में प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह का आयोजन किया जाता है, जिसका मुख्य लक्ष्य है वनों के संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना। इसी थीम को लेकर आज हमारी काव्य गोष्ठी का आयोजन किया जाना है, जिसमें हमारे बीच मौजूद युवा कवि वनों के संरक्षण और वनों के प्रति, पर्यावरण के प्रति हमें क्या जिम्मेदारियां निभाना चाहिए, उन सभी पर अपनी एक काव्य गोष्ठी लेकर आ रहे हैं। इस काव्य गोष्ठी में मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं कुछ युवा कवि, जिनमें हैं त्रिशाला व्यास, किरण खत्री, गरिमा खंडेलवाल, बिंदिया व्यास और दक्षेश पानेरी। इन सभी युवा कवियों ने जंगलों और वनों के महत्व पर कुछ प्रमुख जानकारी अपनी कविताओं के माध्यम से आपको देने के लिए लिखी है। मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा हमारी प्रथम कवियत्री त्रिशाला व्यास को। स्वागत है त्रिशाला जी।
2: धन्यवाद शुभम जी। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी को वन सप्ताह के अवसर पर आयोजित काव्य गोष्ठी में मेरी ओर से स्वरचित यह कविताएं सादर प्रेषित हैं। मेरी पहली कविता है वन। इसमें मैंने वनों के सुंदर स्वरूप का दर्शन प्रस्तुत करने की कोशिश की है। पेश है वन। जीवन का जो आधार है, प्रकृति का जो श्रृंगार है, जीवन का जो आधार है, प्रकृति का जो श्रृंगार है, जो कविता है सुंदर पृथ्वी की, मुख जीवों का जो संसार है, जो कविता है सुंदर पृथ्वी की, मुख जीवों का जो संसार है, देखो इनका रूप निराला, देखो इनका रूप निराला, कितना मनोहर कितना प्यारा, कितना मनोहर कितना प्यारा, हिले मिले रहते यहाँ सब, हिले मिले रहते यहाँ सब, वनों का ये संसार सुहाना, वनों का ये संसार सुहाना, लकड़ी फल औषधियाँ देते, लकड़ी फल औषधियाँ देते, स्वच्छ प्राणवायु का पिटारा, स्वच्छ प्राणवायु का पिटारा, निस्वार्थ देते हैं सब कुछ, निस्वार्थ देते हैं सब कुछ, बनाते नहीं कभी कोई बहाना, बनाते नहीं कभी कोई बहाना, सबका स्वागत सबका ख्याल, सबका स्वागत सबका ख्याल, कलकल बहती नदी की धारा, कलकल बहती नदी की धारा, झरने जर्जर झरते रहते, सुनाते वन रंगीन फसाना, झरने जर्जर झरते रहते, सुनाते वन रंगीन फसाना, वृक्ष अपनी छटा बिखेरे, वृक्ष अपनी छटा बिखेरे, पंछी सुनाए सुरमई तराना, पंछी सुनाए सुरमई तराना, फूलों की सुगंध से मैके प्रकृति का ये राज गराना, प्रकृति का ये राज गराना, कितना जीवन पलता है वन में, कितना जीवन चलता है वन से, कितना जीवन पलता है वन में, कितना जीवन चलता है वन से, बहती निरंतर जीवन धारा, बहती निरंतर जीवन धारा, कितना सुंदर कितना मनोहर, वनों का ये संसार सुहाना, वनों का ये संसार सुहाना।
3: क्या बात है,
4: क्या बात,
5: वाह वाह वाह, बहुत सुंदर।
2: मेरी अगली कविता है आज के ज्वलंत मुद्दों पर, जिसका शीर्षक है स्त्री शिक्षा। जैसा कि हम आज के वर्तमान परिस्थिति से परिचित हैं कि किस तरह कन्या भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, गांव-गांव में लड़कियों को पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है, कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जिन्हें पढ़ना है

0: लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया है, तो मैंने एक कविता इस पर लिखी है जिसमें किस प्रकार एक बेटी अपने बाबा से ये प्रार्थना कर रही है कि मुझे बाबा आगे पढ़ने दीजिए, आप सभी का ध्यान चाहूंगी।
1: इरशाद,
0: बाबा क्या मेरी बात सुनोगे? बाबा क्या मेरी बात सुनोगे? कुछ दिल में है जज्बात सुनोगे? कुछ दिल में है जज्बात सुनोगे? तुमसे इतना कहना चाहती हूँ, तुमसे बस इतना कहना चाहती हूँ, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। तोड़ के सारे बंधनों को, तोड़ के सारे बंधनों को, छोड़ के सारी मिथ्याओं को, छोड़ के सारी मिथ्याओं को, एक नया इतिहास रचूंगी, मैं तेरे लिए पहचान बनूंगी, मैं तेरे लिए पहचान बनूंगी। क्या बेटे ही कुल को तिराते हैं? क्या बेटे ही कुल को तिराते हैं? अक्सर बुढ़ापे में वे ही वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं, अक्सर बुढ़ापे में वे ही वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। फिर क्यों उनको इतना प्यार देते हो? फिर क्यों उनको इतना प्यार देते हो? क्यों हमें पढ़ाने से नकार देते हो? क्यों हमें पढ़ाने से नकार देते हो? मैं पढ़ूंगी घाव कुल और तेरा मान बढ़ाऊंगी, अगर मिला मौका विदेशों में भी देश का परचम लहराऊंगी, अगर मिला मौका विदेशों में भी देश का परचम लहराऊंगी। बेटी एक नहीं दो कुल का मान होती है, बेटी एक नहीं दो कुल का मान होती है, पीहर में ससुराल का और ससुराल में पीहर का सम्मान होती है।
1: क्या बात है?
0: पीहर में ससुराल का और ससुराल में पीहर का सम्मान होती है। अगर पढ़ गई बेटियां समझो सुधर गई पीढ़िया, अगर पढ़ गई बेटियां समझो सुधर गई पीढ़िया, ये दुनिया को समझाना चाहती हूँ, बाबा मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, बाबा
1: मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर,
2: बहुत बहुत।
0: मेरी अगली कविता का शीर्षक है जिंदगी की कहानी। ये कविता आपको जीने का नया नजरिया देगी। अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाइए, अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाइए। एक लम्हा टूटकर बिखरता भी है तो दूसरे लम्हे में उसे सहेज कर अपने पास ले आइए। एक लम्हा टूटकर बिखरता भी है तो दूसरे लम्हे में उसे सहेज कर अपने पास ले आइए। ये जिंदगी है किसी का इंतजार नहीं करती, ये जिंदगी है किसी का इंतजार नहीं करती। हाँ लेकिन कोई इसके साथ चले तो ये इनकार भी नहीं करती, हाँ लेकिन कोई इसके साथ चले तो ये इनकार भी नहीं करती। हर पल मुस्कुराइए, हर पल गुनगुनाइए, हर पल मुस्कुराइए, हर पल गुनगुनाइए। चहकते हुए इस मंजर का मजा लीजिए, चहकते हुए इस मंजर का मजा लीजिए। बहुत कीमती है ये जिंदगी, बहुत कीमती है ये जिंदगी। व्यर्थ की परेशानियों में इसे जाया मत कीजिए, व्यर्थ की परेशानियों में इसे जाया मत कीजिए। हर पल एक पल को सिमट कर बीत रहा है, हर पल एक पल में सिमट कर बीत रहा है। अपने कल के लिए इस पल को मत गवाइए, अपने
1: कल के लिए इस पल को मत गवाइए।
0: कोई अगर रूठ भी जाता है तो फासले ना बढ़ाइए, कोई अगर रूठ भी जाता है तो फासले ना बढ़ाइए।
1: बहुत सुंदर।
0: आगे बढ़िए मुस्कुराइए और प्यार से इन्हें मनाइए, आगे बढ़िए मुस्कुराइए और प्यार से इन्हें मनाइए। किरणों में खुद को डुबोइए, बारिश में भीग जाइए। किरणों में खुद को डुबोइए, बारिश में भीग जाइए। फूलों संग इठलाइए, भोरों संग राग मिलाइए। फूलों संग इठलाइए, भोरों संग राग मिलाइए। जाया करने को नहीं है ये जिंदगी, जाया करने को नहीं है ये जिंदगी। दुख का रोना छोड़, खुशी के गीत गाइए। दुख
1: खुशी के गीत छोड़, खुशी के गीत गाइए।
0: मुस्कान के इत्र से खुद भी महकिए और औरों को भी महकाइए। मुस्कान के इत्र से खुद भी महकिए और औरों को भी महकाइए। अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाइए, अपनी जिंदगी को
1: खूबसूरत बनाइए।
2: बहुत सुंदर,
1: बहुत सुंदर,
2: बहुत बढ़िया।
0: मेरी अंतिम कविता का शीर्षक है सावन। अब आगे बारिश आने वाली है और कहीं ना कहीं सभी को बारिश से बहुत प्यार होता है, तो मेरी कुछ पंक्तियां बारिश पर। इसमें मैंने कोशिश की है कि बारिशों से प्रकृति में हुए परिवर्तन को बताने की। देखो हरियाली लाया है,